दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। और दोस्तों वक्त हो चला है सुबह के 10 बज चुके हैं और लेकर हाजिर हूँ मैं आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों बताना चाहूंगा फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ आज हमारी पहली फरमाइश आई है मोनिका मीना जी की सवाई माधोपुर से। मोनिका मीना जी ने अपने दोस्त को एक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गाना डेडिकेट किया है, तो सुनते हैं इनकी पहली फरमाइश।

0: हेलो सर, राधे राधे।
1: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
0: मेरा नाम समता यादव है, बाढ़ कला से बोल रही हूँ सर।
1: समता जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो रिया से?
0: मुझको गाना सुनना है ऊंट वाली से, जो करो यारी मोरे राजा, तैयारी करो मोरे राजा के ऊंचा करो घर का दरवाजा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का
4: सत्यानाश। मेरा गलीचा, मेरा दरवाजा।

0: कोई नन्हे बनानी हो अपनी औरत तो दे दे सारी दौलत।
1: सोनियो मलाई दे डोनियो, तुझ पर तो मैंने कारों का खजाना लुटा छोड़ा है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: हेलो बेटा जी, प्यार से कारपुरी सतरीकाल भाई।
4: सतरीकाल सर, कैसे हो सर?
3: ठीक है बालक बेटा, थोड़ी सेहत भाई ठीक ठाक है जी।
4: हाँ जी सर, और मौसम कैसा है माँ का?
3: मौसम बेटा बारिश आने वाली है बेटा।
4: अच्छा, बारिश आने वाली है।
3: हाँ जी बेटा, तो राइस का काम शुरू हो गया बेटा, चिटोना लगा, जीरी लगाने लोग लग गए पंजाब में।
4: हाँ सर।
3: तो बेटा अपने बड़े सर मीना जी को भी सत श्री अकाल बुला देना बेटा।
4: ओके सर, मैं बोल दूंगी।
3: बेटा मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मीना साहब इसके पहले काल लगी थी, मीना साहब ने दी थी ना?
4: हाँ जी।
3: वो भी कहाँ सास का कर रहे हैं बेटा रिकॉर्डिंग?
4: हाँ जी।
3: अच्छा बेटा, धन्यवाद बेटा। बेटा मैं परीचा दे दू लोग हो रहा हूँ, पता लग जाएगा।
4: हाँ सर, दो ना।
3: हाँ बेटा, मैं बेटा पिंड मावड़कर जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोलना पंजाब तो बेटा।
4: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: बेटा पहले मैं आपको निक्की जी खुशखबरी बताऊं।
4: हाँ जी।
3: कल बेटा, कल मेरे ना दोते का जन्मदिन था, कल मेरे कार नहीं लगी, फोन बंद आई जाता जी तुम्हारा।
4: हाँ जी सर।
3: तो बेटा उसके जन्मदिन की खुशी बच्चा आपको सारे लख लख बधाइयां देता हूँ। पहले मट्टू भाई बोलो।
4: धन्यवाद। डीएस साइंस एकेडमी के परिवार की तरफ, सारी टीम की तरफ से आपके पोते को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: क्या बेटा, क्या बात है बेटा, जीन जाते रहो, बाद चांदी घर रखो बेटा। उसे खुशी के आपकी मर्जी की गीत सुना दो बेटा। अज
4: गाने के बोल सर,
3: गाने के बेट बोलो बेटा, वो सुना दो। हम तो अगर बच्चे होते, हम तो अगर बच्चे होते ना हमारा, वो जो सुना दो बेटा, लड्डू खाते हो वो।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ठीक है बेटा, सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल।
4: सत श्री अकाल सर,
3: बाबा नानक भला करे,
4: सत श्री अकाल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अमन।
0: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर से बोल रहे हैं।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फॉर्चुनर वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश रहेगी।

0: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: नाम चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ। आरोप
1: चौधरी जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना बढ़िया लाए सर।
1: बताएं सर।
0: दिल चुरा लिया साथिया।
1: बिल्कुल आपकी फरमाइश।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: सुदेश मीना।
1: सुदेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: धौलपुर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: पल पल जीना वो हाल मेरे यार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:30 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: कर रहे हैं हेलो।
4: मेरा नाम
3: हेलो जी, नाम बताएं।
4: मेरा नाम विष्णु
3: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: कोई ना था मेरे साथ में, रोने को आईने में बैठा गुरु था बस।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना।

0: Tune.
1: And the winner of Oho Scene Change Season 1 is Khushi.
2: बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चोदिनी दोनों से भली बात थी, हमें रोका था बहुतों ने, परिवार खुश मुझे तुम क्या रोकोगे, बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पेशो से

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: हाँ सर।
1: क्या नाम है आपका?
0: सुनील मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मुझे तेरी पसंद है, उसको तेरी मर्जी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश करेगा।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम बाबू खान है।
1: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं घट को जुल्म से पानी चरणों फूट जाएंगे।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश करेगा।
2: न झटको जुल्फ से

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: हेलो,
0: क्या नाम है?
1: विवेक कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: गाना
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: न्योली वाले
0: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: गुलशन।
2: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: हम नजम सुनेंगे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश की नजम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या है? कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल मेरा तोड़ के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गौरव मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी है।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: रूबी कौन।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर।

0: जंगल मोटी 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: तो नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अपना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैडम नाम है जय किशन।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: मैं गंगापुर।
1: कौन सा नाम सुनना चाहोगे सर?
0: मैडम मूवी का नाम है राजे हिंदुस्तानी।
1: हाँ जी।
0: फिल्म सॉन्ग है कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:11:07 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: बहन प्रणाम, नमस्कार।
3: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: जी पलक बहना जी प्रणाम, मैं राजू यादव ग्राम उपरे का श्रीराम पटेरा सरेला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बहना जी उसका सुनेंगे सुनेंगे, मूवी का नाम रहेगा मुकदमा। रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल मां तुझे अपना बना लेंगी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: रेडियो बहन,
3: हाँ जी बोलिए।
2: आपके मुस्कुराने से हम बेहोश हुए, जब हम होश में आए तो आपने फिर से मुस्कुरा दिया।
3: धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा।
2: जी बहन जी, जी जी जी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।
2: जी बहन जी, प्रणाम प्रणाम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: मेरा नाम आशीष है।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? अरनिया, गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मीना सॉन्ग।
1: सर मीना सॉन्ग नहीं चलते हैं।
0: तो एक कटोला जेड के भीतर वाला।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। चलो गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है सर आपका?
0: विजय शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: मऊ कला गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: भजन भजन सुनना था। भजन
1: ओके सर।
0: एम भूषण जी का एक भजन है।
1: कौन सा वाला सर?
0: प्रेम भूषण जी का भजन है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आप।
0: मेरे मेरे उनकी खुद की आवाज में है। मेरे मालिक ने मुझको बहुत कुछ दिया है।
1: ओके सर।
0: प्रेम भूषण जी महाराज।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: कार्यक्रम।
1: हम भगवान का विस्मरण कर लेते, भगवान हमारा विस्मरण नहीं करते। और हम सबको एक बात ठीक से स्मरण में रहनी चाहिए, भगवान दोष दर्शन नहीं करते। जैसे सद्गुरु, श्रेष्ठ संत, पिता माता अपनी संतान का दोष नहीं देखते, उसी प्रकार हम सबके माता पिता परमात्मा जीव का दोष नहीं देखते। अरे जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। इसलिए साधक कहता है।

0: हेलो
1: हाँ
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: आकाश कुमार मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: वायर कला।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल मेरा तोड़ के हंसती।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: कर रहे?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी गेल गेल चलो बड़ो परछाई।
0: ओके हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: हाँ सर, हम जागा बहन जी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना तेरी मुरली चिल्ले गई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: करण कौन सा?
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: रवि चौधरी बोल रहा हूँ मैडम।
2: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी के पास गांव है टोक्सी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: कहना ना ये तुम किसी से।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।
1: कहना मत किसी से ये बात आप।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: करण कौन सा?
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हाँ जी, योगेश जांगड़े, बिल में तेरा छत्तीसगढ़।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म साजन का।
2: हेलो
3: हेलो हेलो,

0: हाँ जी नमस्कार मैडम जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अरे आज सुना मैंने महबूबा फिल्म का गाना है, चलो री चलो री किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। ये गाना रेडियो डीएफएम कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े में तरह अच्छा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिल्म साजन का घर, नजर जिधर जिधर जाए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस,
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

0: हेलो
1: नाम क्या है सर आपका
0: जी? क्या
1: नाम क्या है आपका सर?
0: चौधरी असलम।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? सिंगापुर सिटी।
1: कहाँ पे गाना सुनना चाहोगे?
0: इस्कांदे लेके।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: टीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करौली फाटक।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गुलाबी शरारा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हाँ सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: मनोज शर्मा निवेदन कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना?
0: हम दिल दे चुके सनम का। हाँ जी।
1: अच्छा सर आवाज नहीं आ रही क्या?
0: नहीं आ रही है ना मैडम।
1: हाँ जी गाना बताइए।
0: हम दिल दे चुके सनम।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: शिवम मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: संघर्ष।
1: संघर्ष

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: बबलेश मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे
2: हो? वो चंबल के डाकू वाला गाना चला दो।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रिको एरिया।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: विशाल मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी ना चेक कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गरम खून के बालक से।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।
2: सिंगर तो बढ़िया, आजकल गायब पता नहीं कित हो गया। गायब तो कहीं नहीं हुआ है बेटा, पर बस इसे लोग पहचानते नहीं।
3: राव पागल, अरे साले चल ना, छोड़ यार, चल छोड़ छोड़ छोड़, मार मत देगा जिंदगी में, जा भाई चल।
4: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार। ए, क्या हो रहा है?

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।

Thank you.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ पे बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: गर्म की हो गया मैंने हर रोज तेरी कमी महसूस होती है मैंने लगता है मैंने तेरे नल पे आर हो गया

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ अपन
2: वो तो करना पऊगा जी। कुछ होंदे सदा बहार, जेड़े खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जाते हैं।

0: तेरा तो लहंगा ही बड़ा सोना पुत, जमी परी लगी है।
1: चलो नी कुड़ियो, डब्बे आ गए ने, परिए जल्दी जल्दी, मैं भी हेल्प कर दा।
2: तू ना इना रहा मुन्ने ते ना भरोसा ना करेगा।
1: क्यों
2: एवे हुंदे फ्लर्टी जे?
3: क्यों चंगा वाला ता हैगा, ए ता एवे बोलदी रहंदी है, तू एदे वल ध्यान ना दे, है ना?
1: तू इंज क्यों बोलिया?
2: कल मैं वेख्या सी उन्हें किसी कुड़ी नाल फोन ते लम्मी लम्मी गल्ला मार रहे।
4: मामू।
0: हाँ जी रीज।
4: आपकी शादी कब होगी?
0: मेरी शादी? बस तेरी मामी मान जे पुत।
1: सानू की?
0: चल चल तू जा अपनी मम्मी कोले, मैं आया पुत तेरी मामी नूं मना के।
4: मामू की भी शादी होने वाली है।
0: एक्सक्यूज है मैडम, सानू भी दे दो कोई काम।
1: कम चाहिए
0: था।
1: पानी पिला दो सारे।
0: पानी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नहे तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में कुछ

0: 4 4 4।
1: रोटी बनी कि नहीं अजय?

0: रोटी करो बड़ो।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:03 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जो आज हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हर वर्ष 21 जून को विश्व भर में योगा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को योग के प्रति जागरूकता करना और इनका स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। योगा केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर के मन आत्मा को जोड़ने का माध्यम से है। योगा को शुरुआत भारत में

जाता है। यही शुरुआत भारत में नहीं और पूरे पूरी दुनिया का महत्व स्वीकार करता है। योगा के लाभ, शरीर को लचीला व मजबूत बनाता है, तनाव व चिंता को कम करने में मदद करता है, मन की शांत व एकाग्र बनाता है, रक्त संचालन बेहतर होता है, अच्छी नींद का सहायता मिलती है, रोग प्रतिरोग क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नियमित योग करने से व्यक्ति अपने ऊर्जावान महसूस करता है। आज की भागदौड़ में भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में प्रतिदिन 20 या 30 मिनट का योगा करना चाहिए, जो हमारे शरीर में मन वे दोनों को आराम मिलता है। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ वे दिनचर्या बना रहता है। योगा हमें ये सिखाता है कि शरीर की स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य ही मन वास होता है। इसलिए हमें योगा को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योगा करने से हमें क्या महत्वपूर्ण वे क्या लाभ होते हैं। एकत्रित बढ़ाई पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। चीज याद रखने में क्षमता, तनाव व घबराहट कम होने में शांति रहता है, मन शांत रहता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में बेहतर होता है, जैसे गैस है, कब्ज है जैसी समस्याओं को राहत मिलती है। मांसपेशियां हड्डियां मजबूत होती है, रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, थकान कम हो जाती है और शरीर की स्मृति बनी रहती है। जीवन शैली से जुड़े कई समस्याओं से मदद मिलती है। सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल

दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

तुम्हारे बगैर जीना क्या, जीने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। सांसों के बिना शायद कुछ पल मैं जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम, हां तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं जिंदगी से बढ़कर चाहने लगा हूं। मेरा आज, मेरा कल, मेरे दिन, मेरे पल सिर्फ तुम्हारे दम से। मेरी पूजा में, मेरी दुआओं में, मेरी खामोशियों में, मेरी सदाओं में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तारे टूट जाएंगे, चांद बुझ जाएगा, वक्त यहीं ठहर जाएगा, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण बुझने तक, आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा।

तो वक्त हो चुका है 3:49 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे।

0: का रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो।
4: हाँ जी मैम, क्या आपका?
3: गुलशन।
4: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर सिटी।
4: कौन सी फोन सुनना चाहोगी?
3: सब नबियों से आला मेरी काली कमली वाला नजम।
4: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: करनी है दीदी। सर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वास्थ्य हूँ और रेडियो सुनने का मेरे को बहुत शौक है। मैं हमेशा रेडियो सुनना पसंद करता हूँ।
1: हाँ जी सर, मौसम कैसा है उधर का आज?
0: मौसम बहुत गर्म है, वही चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवा है, बारिश के कहीं नामो निशान नहीं है।
1: बारिश का कोई वो ही नहीं है अभी तक
0: समाचार में ज्ञात हो रहा है।
1: हाँ जी, जाना बताइए सर कौन सा सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है बरही और गीत है इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरती पूजा।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए आरती?
1: सौदागर सौदाकर।
0: ओके मैम, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: सुरेंद्र मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रूस्ट सॉन्ग।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: मुझे साजन के घर जाना।
0: ओके मैम, सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। हेलो,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: इश्क के भी चाशनी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए मैम।
2: हेलो, क्या कर रहा हूँ?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते पलक जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने तो उसमें बरसात वगैरह हुई क्या?
1: हाँ सर, बरसात तो कल हुई थी, आज तो बरसात नहीं है सर बिल्कुल भी सुबह से।
0: अच्छा,
1: कल तो थोड़ी बूंदाबांदी आई थी, शाम को भी आई थी बारिश, तो सर तो आज नहीं है बिल्कुल भी, आज तो धूप निकल रही है।
0: और आप बढ़िया हो?
1: हाँ सर ठीक है।
0: चलो फिर गाना लिखो।
1: हाँ जी बताइए।
0: उठा ले घोटा चांद देख ले।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है फकीरा और गाने के बोल है दिल में तुझे बिठा के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद बहन जी,
0: वेलकम सर।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: है मुझे कितना प्यार है तुमसे।
0: कौन सा सर?
1: मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने
0: तुम्हारे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: टू सन टू
0: लिए गाना दूसरा बताइए।
1: छोरी जारी करुणा बाबू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: मैं गलत था।
1: आंगलियां तनाक धोनी हुआ करते मेरे भाई, तो आज भी मेरा भाई है।

0: सर ये कौन है जिनको आप हर रोज देखते रहते हो?
1: हॉस्टल में रहा है कदे?
0: अच्छा, हॉस्टल लाइफ।

0: शेयर नेक्सस।
1: हाँ जी, किवें लग्या मेरा गाना? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी3 दा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियोडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

जब कोई नहीं सुनता, जब दर्द शब्दों में नहीं ढलता, जब आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं, तब भी एक शक्ति है जो सब जानती है, वो है मेरे महादेव जो बिना कहे सब समझ जाते हैं।

आपने एक बात तो अपने जीवन में जरूर सुनी होगी कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको भगवद गीता में मिलेगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये बात बिल्कुल सही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमेशा करेगा, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। देख लीजिए, अपने आसपास आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो एकदम से खुश होकर बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, या फिर कोई चीज बहुत खाने की पसंद है तो खाते ही रहेंगे, उसके बाद में पेट में दिक्कत हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते और कहीं भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देंगे। अब ये सब होता टेम्परेरी है, बाद में वो सॉरी बोलते फिरेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो उनसे गड़बड़ी हो गई। और ये गड़बड़ी तभी होती है जब हम अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो इस नई सुबह की शुरुआत इसी सोच के साथ कि हर बात अपनी इंद्रियों की हमें माननी जरूरी नहीं है। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। 89.6 पे

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: लोगों की सर्दियों को लेकर ना बहुत गलत धारणाएं हैं। मैं हूं आरजी खुशी। जैसे माना जाता है कि सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अंदर से हमको ठंडा कर देता है, वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप सर्दियों में भी दही खा सकते हैं। बस शर्त ये है कि एकदम फ्रिज से निकाल कर आपको नहीं खाना है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए जो आपके कमरे का टेम्परेचर है, और उसमें आप हल्की सी काली मिर्च डाल दीजिए। यानी कि वो चीज जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, अगर वो आप दही में मिक्स करेंगे तो आपको कभी भी ठंड की, जुखाम की या गले खराब की प्रॉब्लम नहीं होगी सर्दियों में दही खाने से। तो जिन भी लोगों को दही पसंद है लेकिन सर्दियों की वजह से नहीं खा पा रहे, वो दही खाना शुरू कर दें। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

देखो किसी भी एग्जाम में ना आप एक बार पढ़ लो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर आपने सही से रिवाइज किया तो आपको वो टॉपिक एकदम अच्छे से याद हो जाता है। मैं हूँ आरजे खुशी। ऐसा ही कुछ लाइफ में भी है। देखो हम लोग ने एग्जाम क्लियर करने का फंडा तो समझ चुके हैं, लेकिन लाइफ को कैसे अच्छे से जीना है ये शायद अभी भी हमको नहीं आया है। इसलिए हमें ये तो पता है कि अच्छी बातें क्या होती है, लेकिन अगर हम उन्हें बार बार बोलकर दोहराएंगे नहीं, किसी को सिखाएंगे नहीं, खुद को समझाएंगे नहीं, तो बीच बीच में हम भी भूलते जाएंगे। बात समझना अलग है और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाना अलग है। इसलिए रोज सुबह मैं इसी सोच के साथ आती हूँ कि खुद में भी बदलाव करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि बेहतर जीवन के लिए हम अपने में क्या बदलाव कर सकते हैं। बाकी मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आपने कभी गौर किया है हमारे बड़े बूढ़े कितने खुश रहा करते थे और हम हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो वो डेली करते थे, जैसे कि कथाएं सुनना, और उन कथाओं से वो बहुत कुछ सीखते थे। पहले तो ये भी होता था कि परिवार के सभी सदस्य दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा बैठ जाया करते थे और प्रभु के ऊपर बातें किया करते थे। आज के जमाने में ये सब बोरिंग माना जाता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो एक तो आप सीखेंगे भी बहुत कुछ और दूसरा एक दूसरे को वक्त देना शुरू करेंगे, जो कि आज हम लोगों के लिए दे पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है शुरुआत में, लेकिन अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आज सुबह की शुरुआत इसी सोच से कि हम अपनों को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आरजी खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: परीक्षा का समय आ गया है और इस वक्त पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। मैं हूँ आरजे खुशी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आया करती थी, और मैं समझ सकती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आती है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो, ये बात तो ठीक है कि सर्दियों में इस टाइम पे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरीके से हम खुद को संभाल पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कोशिश करें कि सूरज में जरूर बैठे। कई बार ये विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली सूरज के नीचे बैठेंगे, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आलस बहुत ज्यादा आता है, तो दो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो दिन के वक्त आपको नहीं सोना है, और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। और एक इससे भी जरूरी चीज, हम लोग सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सर्दियों में। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजी खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर धो के नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: DS मधुरा चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंदना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंद बजना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।